अरे चाली पदलता डलता पचाली अल्फा पीटा बीच बीच के गामा एटमोसफियर के बीच ज्यादा दबाव दे वक्त प्यारे प्यारे होठा विच किलकारियों वाले लाफ्टर ते मुस्कान पाके नशीली अखा दे नूर दी मिलावट करके उसके नाल पाइस स्केलेटन दी सेक्स अपील दी एडिशन करके ऑप्टिमिस्टिकली सी अपना सीन सब शुरू कर दे हां।

पार्टी बक्सा विच बोतल दी ठिप्पी नूं साफ करके खोलो, ओदे विचों मासूम सा जीवन बहेगा। ऊ ला ला ला, ग्लास नूं पाई दे एंगल विच रखो, बोतल नूं 3.5 दे एंगल विच रख के चाह करके चुकाओ, फिर डोंगरस नूं वीर दी तरह पी लो, बस फिर समझ लो आत्मा ने परमात्मा।

0: में क्या है।
1: विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन क्लासेस, अभ्यासासाठी मदत, वोकेशनल ट्रेनिंग, करिअर काउन्सिलिंग, रीडिंग आणि रायटिंग स्किल, मॅथमॅटिक्स स्किल, स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी, हे सगळं मिळेल एकाच ठिकाणी,
2: स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल। या ठिकाणी स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एफ ब्लॉक, 239 MIDC, श्री टाइल्स चौक, अहिल्यानगर। संपर्क क्रमांक 98 23 89 34 39। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: देश की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
1: वापस लौट के आऊंगा मैं, जो रह गया कर्ज चुकाऊंगा मैं, धर्म ही

0: तुझ पे खत्म मेरे जिस्म की रूह को सनम तुम हो।
1: हमारा तिरंगा हवा से नहीं, शहीदों की आखिरी सांसों से लहराता है।

0: साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: परम श्रद्धे
1: तुझे गुरुदेव के चरणों में कोटि शरणना।
0: श्रद्धास्पद ज्येष्ठ गुरु बंधु महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी के चरणों में हम सभी की
1: सादर वंदन।
0: स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, आश्रव समझ में आ गया, संवर समझ में आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो 15 तारीख से शुरू होगा। अभी तो केवल गुरुदेव की गाथा में 9 तत्व चल रहे हैं। अगले 2 तत्व बहुत जरूरी समझने, एक बंध तत्व, कर्म कैसे बांधने, कर्म कैसे बांधने, डिटेल में बाद में कहूंगा, लेकिन सीक्रेट ऑफ कर्मा में मैं कर्म बांधने की प्रेरणा देता हूं। एक ऐसा कर्म बांधो कि उसके फल में, उसके विपाक में, उसके रिजल्ट में दुनिया का पाप समाप्त हो जाए। और उस कर्म का नाम है तीर्थंकर नाम कर्म है। आचार्य के पीछे 1008 लिखा जाता है और उसका कारण है कि तीर्थंकर के नाम कर्म की जिनमें झलक मिलती है उनके पीछे 1008 लिखा जाता है। इसलिए

स्क्रिप्चर में गया है तीर्थयरा समासुरी, तीर्थंकर के समान आचार्य होते हैं। निर्जरा तत्व उसको कहते हैं अनावश्यक कचरे को निकाल देना। तपस्या चल रही है निर्जरा करने के लिए, बंद करने के लिए, दोनों ही चलते हैं। ये चार तत्व एक साथ एक्टिव रहते हैं, आश्रो, संवर, निर्जरा और बंध। तुम्हारा और मेरा जो जीवन चल रहा है ये चार तत्वों की चार पहियों पर चल रहा है। आश्रो भी गतिशील है, संवर भी गतिशील है, बंध भी गतिशील है और निर्जरा भी गतिशील है। रुका इसलिए हूं कि अगला वाक्य थोड़ा ध्यान से सुने आप। समर्थ व्यक्ति स्वयं का भी आश्रो, संवर, बंध और निर्जरा करता है और दूसरों को भी आश्रो, संवर, निर्जरा, बंध कराता है, दूसरों के लिए भी करता है। समर्थ व्यक्ति दूसरों के भी निर्जरा करा सकता है। प्रवर्तक जी के सेवा में जालंधर का प्रवास चल रहा था चतुर्मास का, वहां के उस समय के प्रधान थे महेंद्रपाल जी। गुरुदेव के जन्मोत्सव के आनंद गाथा चल रही थी और एक दिन रात में मेरे पास आए, बोले आपने जो देखा नहीं जो सुना नहीं वो मैंने देखा और सुना हुआ है, आप सुनोगे क्या? मैंने कहा सुनता हूं। बोले गुरुदेव कश्मीर का चतुर्मास, जम्बू का चतुर्मास करके अमृतसर होते हुए लुधियाना पधारे थे और एक बहन को उनके परिवार की भयंकर भयंकर उनका शब्द था, परेशान थी, सब कर चुके थे, बोले ओझा, डॉक्टर, वैद्य, सब हो गया था। गुरुदेव पधार रहे थे और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव पधारे घर पर और कुछ नहीं किया, केवल बहन जहां बैठी थी उसके तीन चक्कर, तीन प्रदक्षिणा करी उस बहन को, कितनी? तीन प्रदक्षिणा करी, मंगल पाठ सुनाया और बहन स्वस्थ हो गई। दूसरों की निर्जरा जो करे, स्वयं की निर्जरा जो करे वो तो नमोरियंता नमेश, दूसरों की जो निर्जरा करे शाहजहांपुर या शुजालपुर का प्रसंग तो शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। प्रवर्तक सिंह जी भी उसके दोनों ही प्रसंगों के प्रवर्तक जी साक्षी है, मैं तो केवल श्रोता हूं, वो साक्षी है कि वहां शिरोमणि जी है ना, दर्द था, वंदन करे, गुरुदेव ने हाथ रखा, दर्द गायब हो गया, उनके असाता वेदनीय कर्म की निर्जरा हो गई। ये दो मेरे सुने हुए, एक मेरा देखा हुआ, मेरे देखे हुए बहुत है। दो प्रसंग दे रहा हूं आपको, दूसरों की निर्जरा, दूसरों का पाप समाप्त करना, इसमें जो समर्थ होते हैं वे तीर्थंकर के वंशज होते हैं और दूसरे का जो पाप बढ़ाते हैं वे रावण के वंशज होते हैं। जो दूसरे का दुख हारे वो तीर्थंकर का बेटा है और जो दूसरे का दुख बढ़ाए वो रावण का बेटा है। १९७४ की बात है, कांदावड़ी बंबई चतुर्मास चल रहा था, मोतीलाल जी कोठारी, ये उत्सवोत्तर की बात है कि जिस समय कैंसर का नाम सुनना यानी फांसी का फरमान सुनना जैसा होता था, उनको गले का कैंसर हुआ और पूरे परिवार के साथ वो कांदावड़ी गुरुदेव के दर्शन के लिए पधारे।
गुरुदेव पट्टे पर विराजमान थे, पार्टीशन का ही रूम था छोटा सा। और उन्होंने गुरुदेव से कहा, परिवार वालों ने कहा, और गुरुदेव ने गले पर से हाथ फेरा और गांठ गायब थी। इसी नगर के भूमि पर एक प्रसंग हुआ है, बहुत ही प्रसंग, मैं कुछ कुछ प्रसंग दे रहा हूं आपको। रात्रि का समय था, गुरुदेव मच्छरदानी में लेटे हुए थे, ये 92 की बात है। हम बाहर जो पत्रे की पड़वी थी उसमें नए महेंद्र ऋषि जी और दो तीन भाई बैठे हुए थे। दो बंधु आए रात के समय में, सीधे अंदर चले गए, गुरुदेव मच्छरदानी में लेटे हुए थे। और उस समय गुरुदेव, हम संत भी वंदना करते थे तब भी सिर पर हाथ नहीं रखते थे, क्योंकि अपने अंतर की समाधि में तल्लीन हो गए थे। वो जवान ने जाकर के खुले में माथा रखा और गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। पांच सात मिनट के बाद तो रोता रोता हम बाहर आया। हमने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? वो तो बोल नहीं पा रहा था। उसके साथ में जो भाई था उसने कहा, हम दिल्ली सदर बाजार से आए हैं, ये टोबैको टूथपेस्ट इपको एक दिन में 3 ट्यूब लगती है, इसको हर 10 मिनट में रगड़ता है, हर 10 मिनट में। परेशान हो गया बोले। और सदर बाजार से हम इस संकल्प के साथ से लेके, हमने सुना था कि गुरुदेव अब सिर पर हाथ नहीं रखते। और इसने मन में भावना, भाई मैं गुरुदेव को वंदन करूंगा, और गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो इपको को हाथ नहीं लगाऊंगा। और गुरुदेव ने कह रहा, उसी के सिर पर हाथ रखा, इपको छूट गई। ये निर्जना है। ऐसे निर्जरा करने में समर्थ थे। इन 9 तत्वों की निर्जरा तत्वों की बात चल रही है। मैं पुनः कहता हूं कि आश्रम, संवर, बंध और निर्जरा, ये मैं मेरे भी कर सकता हूं, आप स्वयं के भी कर सकते हैं, दूसरे के भी कर सकते हैं। तुमने केवल इतना ही सुना है कि जको बांधेला वो भोगेला, है ना, जिरा करम वो रासा थे, तुमने इतना ही सुना है। लेकिन जैनिज्म ये कहता है, जैन आगम ये कहते हैं कि तुम अपने भी कर्म बांध सकते हो, दूसरों को भी कर्म बंधवा सकते हो, और दूसरा कर्म बांध सके ऐसा माहौल बना सकते हो। टेंशन में और शॉक में होंगे तो डिटेल तो 14 तारीख के बाद ही शुरू होगा, 15 तारीख से कुछ

जिन शासन में किसकी हिम्मत नहीं है। तीर्थंकर के समोष चरण में शेर और बकरी, आई डोंट नो तुम पास पास में बैठे हो, मजबूरी में बैठे हो कि मोहब्बत में बैठे, आई नहीं जानता, मुझे नहीं पता है। लेकिन तीर्थंकर के समोष चरण में शेर और बकरी एक दूसरे के पास प्रेम से बैठती है। बकरी को शेर का डर नहीं लगता और शेर को बकरी को खाने का मन नहीं होता है। आगे बोलू, हेलो। सांप और नेवला, सांप और नेवला कहीं पर भी दूर से एक दूसरे को देख ले, हेलो। मैंने जब हेलो कहा तब समझ जाओ, जब आपने हल्ला है थोड़ा सा, दूर से भी सांप नेवले को देख ले, नेवला सांप को देख ले, चुपचाप निकल जाते क्या? हेलो, क्या करते? भिड़ते, भिड़ते। ऐसे किन किन के साथ तुम्हारे सांप और नेवले के संबंध है? कि जिसको देखने के बाद अंदर में बिल्कुल वीर श्री का संचार होता है कि नहीं? किसी के साथ हाथ ऊपर करनो भी भारी है, ना क्यों भी भारी है। ऐसे सांप नेवले भी तीर्थंकर के समोशरण में दोस्ती के निस्ते में आराम से बैठते हैं। ये किसके प्रभाव से, किसका कर्म, किसका असर, किसकी ओरा, किसका मंडल? वो तीर्थंकर के कारण से उनके वैर भाव के निर्जरा हो जाती है। मैना सुंदरी और श्रीपाल ने आई मिल की ओली करी, कुष्ठ रोग किसको था? मैना सुंदरी को, श्रीपाल को था। फिर मैना सुंदरी ने कहा किसने आई मिल की ओली करी? सेवा कर दी ना, पर उसने भी करी। और आयंगिल की ओली होते पूरी होते होते श्रीपाल स्वस्थ सुंदर कंचनवर्णी काया का धनी बन गया। और ओली पूरी होने के बाद पारने के पहले मैना सुंदरी ने जिनके श्रीपाल पर उपकार थे, किसी पास से वो सारी स्टोरी चुन चुकी थी कि वो जिंदा है, 3700 कुष्ठ रोगियों के कारण से जिंदा है। जिस समय उसे उसके पीछे चाचा के सैनिक लगे थे और छिपने की जगह और शरण की जगह किसने दी? 3700 कुष्ठ रोगियों ने दी। और ये 700 कुष्ठ रोगियों ने उसको राजा बना करके रखा था। पारणा करने के पहले जिसके उपकार उसके नाथ पर है, उन उपकारियों को नमस्कार महामंत्र की पावन शक्ति से स्वस्थ करने के लिए नौकार मंत्र के अनुष्ठान से चार्ज किया हुआ पानी पिलाती नहीं है, पिलाती नहीं है, क्या करती? केवल छिटकती है। श्रीपाल को स्वस्थ होने के लिए 9 दिन लगे, श्रीपाल को स्वस्थ होने के लिए 9 दिन लगे। रामेश्वर तू मोबाइल छोड़ो, बस जाना। श्रीपाल

0: को स्वस्थ होने के लिए 9 दिन लगे, 700 कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ होने के लिए 9 सेकंड नहीं लगे। उनके अशुभ कर्म की निर्जरा कराई या नहीं कराई? तुम केवल स्वयं के घर में ही झाड़ू लगा सकते हो कि दूसरे के घर में भी झाड़ू लगा सकते हो? इसका उत्तर नहीं देंगे तुम, लेकिन दूसरा पूछो तो उत्तर दे दोगे। तुम केवल कचरा स्वयं के घर में करते हो कि दूसरे के घर में जाकर के भी करते हो? कचरा करो नहीं करो, दूसरा घर में जाए नहीं। हेलो, करते हैं यानी अनुभव है ना। अरे कचरा कर सकते हैं तो कचरा साफ भी दूसरे के घर का कर सकते हैं, ये जैनिज्म है। ये जैनिज्म है, ये जैनोलॉजी है। और गुरुदेव ने जिंदगी भर यही किया, पूरे भारत में घूम करके। हर घर हर संघ जहां पहुंचे वहां कलह का जहर समाप्त किया। श्रमण संघ बना नहीं था, श्रमण संघ बनने की तैयारियां चल रही थी। समाज तैयार था, साधु साधुओं को तैयार करना था। और उदयपुर समाज ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम उस संत का चौमासा कराएंगे जो सांप्रदायिकता को समाप्त करेगा। उदयपुर में सारे संप्रदायों के गड़े, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग थे, चाहते थे कि समाज में संगठन हो, सांप्रदायिकता समाप्त हो, और उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि चौमासा उसका कराएंगे तो उदयपुर में इस सांप्रदायिकता के माहौल के जगह पर संघ एकता का माहौल बनाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस से पूछा किसका चौमासा कराए, इतिहास है लिखा हुआ इतिहास है। और कॉन्फ्रेंस ने कहा केवल आनंद ऋषि जी का चौमासा करा सकते हो। और संघ ने विनंती करी और गुरुदेव ने चौमासा किया। हजम थोड़ा होता है। हेलो, ये तो अच्छा है आपके, आपका हजम होना अच्छा है, आपको हजम हो रहा है अच्छा है। अब तक तो मैंने सुना नहीं कि चौमासे के बाद किसी को चौमासे को देख करके जुलाब लगे, ऐसा सुना तो नहीं अब तक। गुरुदेव की कृपा है। लेकिन वहां कई लोगों के पेट दुखने लग गए, लेकिन गुरुदेव का जीवन इतना था कि उंगली उठाने को जगह नहीं। और जिनके ये परंपरा का ये घर उदयपुर में नहीं, और वहां चौमासा, वो चौमासा भी शिखर पर जा रहा है कि मधुर वाणी, सबके मन का कलमश हलने वाली वाणी, लोगों के अंदर की नफरत को समाप्त करने वाली वाणी, सब में प्यार और धर्म श्रद्धा जागृत करने वाली वाणी, कई लोगों को लगा कि कुछ न कुछ तो गलती खोजनी पड़ेगी। बिना इनकी कमी पकड़े इनका चौमासा बिगाड़ नहीं सकते। और उस समय बाहर की भूमिका को जाते थे लोग भी और संत भी। अब लोग भी नहीं जाते, संत भी नहीं जाते। गुरुदेव बाहर की भूमिका में सब संतों के साथ गए हुए। अब लंबा उदयपुर कोई नजीक तो ही नहीं जगह, और लोगों ने रेकी कर ली थी, कितना समय लगता है, कब जाते हैं कब आते हैं, कितना टाइम लगता है, उसको सब बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया था। मुझे एक बात बिल्कुल पक्के पता है, धर्म करने वाले का दिमाग उतना तेज नहीं चलता जितना षड्यंत्र करने वाले का चलता है। हेलो, बराबर है क्या? षड्यंत्र करना हो तो दिमाग फास्ट चलता है, बात सुलझानी हो तो दिमाग सुझेज को नहीं मार सकता। सुलझाना सुझता नहीं है और उलझाना सुलझेना रहता नहीं है, वो षड्यंत्र उनका। और उन्होंने चार पांच लोगों ने मिलकर के एक को बाहर खड़ा किया और सबने गुरुदेव के पूरे सामान की। वही बैठी है माता जी, वही बैठी है, वही बैठ जाएंगे। सारे सामान की चेकिंग शुरू करें, कुछ तो भी मिल जाए, एक छोटा सा पत्र मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, कुछ न कुछ मिल जाए। बाबू सेठ ने नवी पेट में आचार्य श्री काशीराम जी महाराज का प्रसंग सुनाया था कि काशीराम जी महाराज साहब को परिग्रह के करके लोगों ने, नगर के लोगों ने चेकिंग करी थी, वो तो सामने करी थी। यहां तो गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सारे, क्योंकि उस समय कोई सेवक साथ में नहीं रहता था, कोई कर्मचारी साथ में नहीं रहता था, ना साइकिल वाला, ना गाड़ी वाला, ना पगारी, ना बिन पगारी, सामान स्वयं कोई उठाना है। सारा दफ्तर खोल करके देख ले, कोई एक छोटी सी चिट्ठी मिल जाए, कोई एक चीज मिल जाए, कुछ मिला नहीं। और गुरुदेव का आने का समय हो गया है। बिखरना आसान है कि समेटना आसान है? समेटना। हेलो, बोलो ना, इतो सोपो सोपो सवाल पूछो, थाने क्यों डरवाड़े जवाब दो ने। बिखरना आसान है, समेटना। अब वो सामान बिखरा तो था, अब समेट कर वापस बांध कर नहीं रखेंगे तो पोल खुल जाएगी। अब वो समेट में लगे, और गुरुदेव जैसा समेटना नॉट पॉसिबल। चाहे जो सामान हो, उनका कभी बिखरा हुआ सामान रहता ही नहीं था। बिखरा हुआ सामान देखना हो तो प्रवीण ऋषि के पास आना, यहां आज भी। मैं बिखरने में मास्टर हूं, समेटता नहीं हूं। और गुरुदेव समेटने में मास्टर थे। ऐसा समेटना कि उनके जैसे समेटना किसी को आया ही नहीं। कपड़े की चादर थे ने इस्तरी करने जैसी थे, घड़ी घालो ना, ताकि तो भी इस्तरी घड़ी आटने उठने हो सके। गुरुदेव ने चादरी चोलपट्टरी घड़ी आगे उलारे, उनको सवाल को नहीं, उन्हें पुट्ठा बांधना। अब खोला तो सही, लेकिन गुरुदेव जैसा बांधते नहीं आए, लेकिन गुरुदेव आ रहे थे, फटाफट बांध करके भाग गए। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा कि जैसा रखा था वैसा नहीं है, समझ गए कि किसी ने कुछ किया होगा। अब वो जो गए ना, उनको डर कि गुरुदेव व्याख्यान में चर्चा करेंगे। लेकिन आचारांग सूत्र का जिक्र है संत के लिए, न गाम वायम करे जा, चर्चा नहीं करनी ऐसी। चोर की चर्चा नहीं करी, चोरी भी उसकी चर्चा नहीं करनी, चर्चा नहीं करनी। जिसके कारण से प्रपंच बढ़ता हो चर्चा नहीं करनी। गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला व्याख्यान में, ना श्रावकों के पास कुछ बोला। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अब उनका तो ब्लड प्रेशर किनका? हेलो, मैंने मालूम है अभी तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़े को नहीं, इन बातें करने। उस समय के लोगों को कम से कम पाप का बोझ लगता था। आप तो सारे पाप प्रूफ हो गए, अब पाप कर करके भी बोझ, मस्ती से सोवे लो, ये सर लो, हाँ मस्ती से सो, पाप चुभता ही नहीं अब लोगों को। उस समय लोगों को पाप चुभता था। गुरुदेव ने जब तीन दिन कुछ नहीं बोला तो तीन दिन के बाद एक दिन रात को सारे जाने के बाद वो चारों पांचों गुरुदेव के पास पहुंचे, वंदना करी, मथे पर पगों पर माथा रखा, बोले हमको माफ करो। बोले किस बात की माफी, किस बात की, तुमने मुझे कुछ बोला नहीं, गुरुदेव पहचानते भी नहीं उनको। बोले क्या हुआ, किसकी माफी? बोले तीन दिन पहले हमने आपके सामान की पूरी ही तलाशी ली, कुछ खोजने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। और आपको बोले पता है कि आपके सामान की तलाशी ली गई लेकिन आपने किसी कुछ बोला ही नहीं। गांव संसरी हमने कुछ जा, गुरुदेव ने कहा भाई उसमें क्या, जो भी हमारे पास है वो समाज का है। हेलो, जैन साधु के पास जो भी हो किसका है, समाज का है। तुम समाज हो, तुमने देखा, तुम्हारा सामान देखा है, मुझे क्या माफी का विषय। लेकिन तुमने पूछ करके देखा होता तो शांति से देख पाते। समझ लिया ना? अभी तो आपको पता ही है कि श्रीमान जी ने कभी श्रीमती जी का मोबाइल चेक कर लिया तो डिवोर्स की केस पक्की है। और मैक्सिमम पेरेंट्स की मेरे पास खबर है कि कॉलेज में जाने वाली बेटी का और बेटे का मोबाइल वो ओपन कर ही नहीं सकते, लॉक। और कहीं मां बाप ने चेक करने की कोशिश करी तो बेटे और बेटी दोनों ही मारो फोन चेक क्यों करी हो। मां बाप को भी आप चेक करने का राइट रहा नहीं। हाथ ऊपर करो ना कि किने किने किने किने हिम्मत है अपना बच्चा और सबको सामान चेक करेंगे। जिन्हें बच्चों ने वो हाथ ऊपर करियो है। निर्जरा का तत्व है ये, जब उन्होंने किया होगा तो संग समाज में से सारा विद्वेष निकल गया होगा। आप ऐसा भी वचन बोल सकते हो कि अंदर का पाप जागृत हो जाए, और ऐसा भी वचन बोल सकते हो कि पाप, हेलो, निकल जाए। आप कैसे वचन बोलते हो, आदमी निकल जाए कि पाप निकल जाए? कभी कभी तो पूछो था नहीं, रोज तो पूछो को नहीं। अपना काम क्या है, आदमी का पाप समाप्त साफ करना कि आदमी को साफ करना? निकल जाए हमारे सामने से। अब लोग बीच में देखो थे शब्द बोलो तो को नहीं बोलो मैं क्या करना चाहिए, उसकी गलती को साफ करना चाहिए कि उसको साफ करना चाहिए। हेलो, सब जितनी भी माता यहां बैठी हुई है जल्दी से हाथ जोड़ो है ना, और जितने बाप भी यहां बैठे वे भी हाथ जोड़ लो, जितने सासुएं बैठी वे भी हाथ जोड़ लो। गुरुदेव के जन्मोत्सव में एक ही प्रतिज्ञा है अपनी कि घर के किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो गलती क्लियर करूंगी, आदमी को क्लियर नहीं करूंगी। हेलो हेलो दू पचकान पचकान दू हा? कचरे को निकालना कि आदमी को निकालना, बस इतना से पचकान बड़े कहीं को नहीं। गुरुदेव को याद करते हुए आपको तज बनते पड़ी कमनिंद घर ओसरे ओसरे ओसरे, और इतने भी पचकान तुमने निभाए ना तो तुम्हारे घर में गुरुदेव की कृपा 100% बरसेगी। गुरुदेव ने परायों के साथ ऐसा व्यवहार करा, तुम अपनों के साथ तो करो। फिर घर में अशांति होगी क्या इतने पचकान निभाए तो? हा? नहीं होगी, इतने से पचकान निभाए। क्यों? गुरुदेव संग नायक बने, कल बाबू सेठ ने महासती चंदा चंदन जी की बात करी थी, उसके बाद भी चंदा जी 1982-3 में आए थे, 82-3-5 में आए होंगे। गुरुदेव नवीपेट के स्थानक में शेष काल में विराजमान थे, शहंशी की बात उसके बाद की, सुमती कौर जी के साथ नहीं अलग से आए थे। और उस समय ऐसे ऐसे समय पर जो है ना आपको ये दिखते भोले भाले हैं, लेकिन जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं ना आने वाले होते हैं, इनको पता नहीं कौन सा सेन सेन कौन सा अंतर ज्ञान है, ये कहीं ना कहीं बाहर गए हुए रहते। तो उस समय कहीं बंबई में या कहीं दीक्षा के लिए पधारे हुए थे, और चंदा जी आने वाले थे, वातावरण बड़ा तप्त था, तनावपूर्ण था। चंदा जी आए गुरुदेव के पास, मैं वही था तैयारी में, लेकिन चंदा जी आए, चंदा जी ने वंदना करी, गुरुदेव ने उनको साता पूछी, और चंदा जी बोलने लगे कि वैचारिक अंतर था, वैचारिक अंतर था। वो बोलने लगे, गुरुदेव ने उनको रोकते हुए एक ही वाक्य बोला, एक सिंगल सेंटेंस बोला, पानी में तलवारें चलाने से पानी में दरारें नहीं होती है, पानी में तलवार चलाने से दरारें नहीं होती है। और चंदा जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। अब दोनों राजी तो अपन क्या करेंगे, क्या उत्तर था? कि प्रेम का जल जहां होता है वहां तर्क के दलाए मतभेद की तलवारों से दरारें नहीं आती है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन रिश्तों में दरारें नहीं आती है, या तो बिना मतभेद की दरारें आती है। एक गुरुदेव की गाथा है, और सोचो एक वाक्य से उन्होंने कितनी निर्जरा करा दी, कितने लोगों के मन में जो शंका के बादल मंडरा रहे थे। भैया एक प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ भैया इतने जो शंका के आशंका के बादल मंडरा रहे थे, एक वाक्य बोला और सारे बादल क्लीन हो गए। आप एक वाक्य बोलते हो तो आशंका के बादल मंडराते हैं कि चले जाते हैं? आशंका के बादल चले जाए उसको निर्जरा कहते हैं, सामने वाले के अशुभ मनोयोग समाप्त तो हो जाए उसको निर्जरा कहते हैं, सामने वाले की अशुभ क्रिया रुक जाए उसको निर्जरा कहते हैं, पाप के निर्जरा कहते हैं उसको। किसके निर्जरा कहते हैं? पाप के। किसकी निर्जरा करनी चाहिए बोलो तो सही? पाप की। आप किसकी निर्जरा करते हो? पुण्य की। ये नियम है, यदि पुण्य का बंद होगा तो पाप की निर्जरा होगी और पाप का बंद होगा तो पुण्य की निर्जरा होगी। जैसे जैसे तुम पुण्य करते जाते हो वैसे वैसे पाप की निर्जरा होती जाती है, जैसे जैसे पाप करते जाते हो वैसे वैसे पुण्य की निर्जरा होती है। सारे वासुदेव रावण पिछले जन्म का पुण्य लेकर के आया था। जितने भी इस समय सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, वंदनीय आदर्श भक्त, जिनके प्रति अपने मन में रहा घनो सक्सेस है, घनो यो है, लोकप्रिय है, ये सारे लोगों की पिछले जन्म की पुनवानी है। ये पुनवानी लेकर के आए थे, लेकिन पुनवानी के रहते हुए उन्होंने किसका पुण्य की निर्जरा करी और पाप का बंद किया। अर्जुन माली ने पाप का बंद किया, पाप का बंद किया और प्रभु के पास आकर के ऐसे पुण्य का निर्माण किया कि 6 महीने का पूरा पाप जो कितनी नरक की यात्रा कर करके समाप्त नहीं हो सकता था 6 महीने में क्लियर हो गया। ऐसा करने वाले गुरुदेव थे, न केवल स्वयं के पाप की निर्जरा करी, पूरे स्थानकवासी समाज के, पहले पहले ऋषि संप्रदाय के, रतन ऋषि जी महाराज साहब का जिस समय स्वर्गास हुआ उस समय ऋषि संप्रदाय में जितने संत थे उनका भी परस्पर में प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं था। सबसे पहले ऋषि संप्रदाय का उन्होंने प्रेम का माहौल तैयार किया, प्रेम का माहौल तैयार किया। कई दशकों से ऋषि संप्रदाय में कोई आचार्य नहीं था, गुरुदेव ने प्रयास किया, संतों में प्रेम भाव जागृत किया, उनसे बड़े संत थे लेकिन परस्पर में मन मुटाव था, बिखराव था, और वो बिखराव को समाप्त कर करके शास्त्रोद्धारक पूज्य अमलोक ऋषि महाराज साहब को आचार्य पद पर अभिषिक्त किया। 1932-31 के आसपास प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथम जी महाराज साहब जैन दिवाकर जी महाराष्ट्र में पधारे, गुरुदेव भी भूसावल का चौमासा पूरा करके उनके दर्शन के लिए मनमान पधारे। जो बात मैं कह रहा हूं आपको आगे, ये बात कवि श्री केवलमणि जी महाराज साहब ने 13 फरवरी 1975 को पुणे के अमृत महोत्सव के समय भरी मंच से कहा था, जो दिवाकर जी महाराज साहब के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि जिस समय ऋषि आनंद ने दिवाकर जी महाराज साहब के मनमान में दर्शन करे, दिवाकर जी महाराज साहब शिखर पुरुष और उस समय गुरुदेव की उम्र केवल 32 साल की, रतन ऋषि महाराज साहब के स्वर्गवास होने को केवल 5 साल हुए थे। कितने? रतन ऋषि महाराज साहब का स्वर्गवास तब हुआ जब गुरुदेव 27 साल के थे और 32 31 32 में मनमाड़ में दिवाकर जी महाराज साहब के दर्शन करे, पर दिवाकर जी महाराज साहब ने अपने उत्तराधिकारी शिष्य से प्यारचंद जी महाराज साहब को, जो उनके अंतेवासी शिष्य थे, उनको कहा ये संत भविष्य में संघ समाज का संगठन करेगा, ये विघटन को समाप्त करेगा, संगठन करेगा, ध्यान में रखना, आचार्य इसी को बनाना है। जिस समय तो कोई तैयारी भी नहीं थी, क्या जीवन था, क्या जीवन की शैली थी कि पहली बार दर्शन करे दिवाकर जी महाराज साहब के, और एक जवान संत, और जवान संत के विषय में दिवाकर जी महाराज साहब ने कहा कि भविष्य में यह संगठन करेगा, उस समय आचार्य ऋषि को बनाना है। और आगे जाकर के प्यारचंद जी महाराज साहब ने जब ब्यावर में श्री वीरवर्धमान श्रमण संघ की स्थापना हुई, तब प्रधान आचार्य गुरुदेव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विश्वास लोगों का मिलाना, ये विश्वास, ये आस्था, ये श्रद्धा, ये तभी मिलती है जब दूसरे के मन में की शंका तुम दूर कर पाओ, दूसरे के मन में जो अविश्वास है उसको समाप्त कर सको। ये अविश्वास को समाप्त करना, इसको निर्जरा कहते हैं। दूसरे के मन में जो अशंका के बादल है उसको समाप्त करना, उसको दूर करना, उसको साफ करना, इसको निर्जरा कहते हैं। और ऐसे निर्जरा करने वाले आचार्य भगवंत का, उन्हीं के पुण्य भूमि में चल रहा है ये जन्मोत्सव। आप सभी के श्रद्धा भक्ति के कारण से शिखर पर पहुंच रहा है।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।
2: स्नेहालय संचलित सक्षमा प्रकल्प म्हणजे शिक्षण, रोजगार आणि आत्मसन्मानाचा सुंदर संगम, आणि बेडसाइड असिस्टंट नर्सिंग कोर्सेसद्वारे 18 ते 45 वयोगटातील युवक आणि युवतींना दिले जाते मोफत प्रशिक्षण, निवास आणि रोजगाराची हमी फक्त 90 दिवसात। 8वी पास असलेले उमेदवार स्नेहालय आणि केअरिंग फ्रेंड्स हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर रुग्णालयाच्या सहकार्याने आरोग्य सेवेतील कुशल सहाय्यक बनतात, कारण स्नेहालय मानतो सक्षम बनणं म्हणजे स्वतःच आणि समाजाचं भविष्य घडवणं। अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 95 11 89 67 75।